0: नहीं,
1: हरि भजन बिना सुख शांति नहीं,
0: हरि भजन बिना सुख शांति नहीं,
1: हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन

0: ओ किंग ऑफ अंगा, आई नीड योर हेल्प. आई वॉज टोल्ड आई विल फाइंड यू एट कुरुक्षेत्र, सो आई केम ऑल द वे जस्ट टू मीट यू. बट सीइंग यू इन दिस कंडीशन, आई फियर दैट आई हैव फूलिशली फोर्स्ड माई फ्रेल ओल्ड लेग्स टू मेक दिस पेरिलस जर्नी इन वेन.
1: वेट अ भाई, और रिवियर्ड वन, एक्सेप्ट माय सैल्यूटेशंस. यू हैव कम टू मी इन योर आवर ऑफ नीड. प्लीज टेल मी व्हाट दिस हम्बल करना कैन डू फॉर यू.
0: आई एम अ पुअर ब्राह्मण, आई नीड सम मनी फॉर परफॉर्मिंग माय डॉटर्स मैरिज. बट यू आर ऑन योर डेथ बेड ओ करना, हाउ कैन आई आस्क समथिंग फ्रॉम समवन हु इज हिमसेल्फ इन सच अ हेल्पलेस स्टेट. आई माइट हैज वेल गो बैक.
1: नो वेट, प्लीज, आई बेसीच यू. ऑल माय लाइफ आई हैव लिव्ड फॉर चैरिटी एंड इन द सर्विस ऑफ अदर्स. इवन इन हिज लास्ट ब्रेथ लेट इट नॉट बी सेड दैट करुणा सेंट समवन अवे empty-handed.
0: What are you doing?
1: Here, please take this golden tooth. It is all that I have. Take it and sell it. Take it.
0: Shiva, sacrilege! This tooth is stained with blood. I cannot accept such an impure token. It is better I ask someone else than be insulted in this manner.
1: No, please wait. Wait, O learned Vipra. Here. It is clean, O noble boy. Take it as an offering from me. Otherwise, I will not be able to die in peace.
0: The earth seems too small to contain your glory and good name, O Radheya. May God grant you liberation for all your good deeds.
1: Your so-called God has forsaken me all my life, and now you grant me liberation. Who are you, O Brahman, to grant me what fate has ordained that I should never have?
0: Call me by any name you like. This was nothing but a test of your character, O Karna, and you have succeeded indeed.

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है करन उन दया वै धाए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय। दसा पातशाहियां के स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देख चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारा ध्यान तरके खालसा साहब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहब बोलो श्री वाहिगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकार आखा आपा काल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रह पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहब बोलो श्री वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहेब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी का ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार सहज पाठ आरंभ करवा रहे हैं सहज पाठ की सीडी बनाने की सेवा कर रहे हैं सिर ते मेहर पर हथ रखना सीडी बनाने की सेवा करदिया ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੋ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ।

लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता हुए, केता तन सवाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरमो पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार। कुदरत कौन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बढ़ात्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी।

मन माहे तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड।